बड़ा बेईमान है आज मौसम। ये गाना मैं कह रहा हूं मॉर्निंग से, मतलब आज मौसम अपडेट क्या है ये जान लेते हैं। और मतलब ये गाना मॉर्निंग से मैं सुन रहा हूँ कि क्या ही बात है यार, एक गाना अलग अलग लेवल है, बहुत अलग लेवल है। तो WRAL और ABC 11 वेदर के अनुसार सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना, दैट इज सेंट्रल NC में रहने वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी गर्म और उमस भरा, दैट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड वाला रहने वाला है, जिसमें तापमान 90 डिग्री फॉरेन हाइट से ऊपर जाने की संभावना है। मतलब आपको क्या करना है, भरपूर मात्रा में लिक्विड डाइट लेना है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है एंड अपने आप को हेल्दी रखना है। आप अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होने वाला है। कपड़े भी थोड़े हल्के पुल्के ओवर साइज अगर पहनोगे तो फैशन को भी फॉलो करोगे एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेंगी। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रो।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाण नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। रात के लगभग अभी 8 बज रहे हैं एंड इस शो के दैट इज निर्वाणा नाइट्स के दूसरे घंटे में अब वक्त हो चुका है मनोरंजन और खेल की दुनिया की बड़ी हलचल का। फिल्मी गलियारों की इनसाइड गपशप, नए ट्रेलर्स और अपने चहेते सितारों की लाइफस्टाइल से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट आपको मिलेगी रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स में। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था कि थैंक यू सो मच रेडियो नायरा को इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, देन उसके बाद आप सुन सकते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारे आरजेस की शो, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक दुनिया के किसी भी कोने में। आप सुन सकते हैं हमारे रेडियो चैनल, आपका पसंदीदा चैनल रेडियो नायरा को। बस आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा रहना चाहिए। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, सुनते हैं एक अच्छा

अब सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडित नाइट जैन, मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को बिल्कुल ही रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था कि कैसे चल रही है आपकी आज की मंडे की शाम। ज़्यादा थके तो नहीं काम करके, लेकिन थकना नहीं है, चलने का नाम ही जिंदगी है। तो फ्रेंड्स, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर आ रही है, उसने पूरे कॉरपोरेट और फिल्म जगत में हलचल मचा दी है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की आने वाली मेगा फिल्म लव एंड वॉर के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर आज मुंबई में 300 करोड़ की एक बहुत बड़ी डील की रेस शुरू हो गई है। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए देश के 3 बड़े प्रोडक्शन हाउस आपस में टकरा रहे हैं। इसी खबर के साथ आपको बता दूं कि फिल्म की रिलीज डेट अब आगे बढ़ाकर 21 जनवरी 2027 कर दी है, ताकि रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म रामायण के प्रमोशन पर पूरा ध्यान दें।

एंजॉय किया ये गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नाइना पर निर्वाणा नाइट्स एंड माया नगरी से दूसरी बेहद चौंकाने वाली खबर हमारे सिंगम यानी अजय देवगन को लेकर है। अजय देवगन जिसके बाजुओं में है दम जो आज की ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार अपना बड़ा टेलीविजन, जी हाँ फिर से दोहराना चाहूँगा, बड़ा टेलीविजन डेब्यू करने जा रहे हैं। अजय देवगन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के सबसे मशहूर और चर्चित रियलिटी शो क्राइम पेट्रोल के नए सीजन को एंकर के रूप में रन करने जा रहे हैं। ये नया सीजन आने वाला है। शो के मेकर्स ने आज दोपहर बयान जारी कर बताया है कि ये नया सीजन क्राइम एंड करंट थीम पर आधारित होगा जो 31 तारीख से ऑन एयर होने वाला है। एंड अजय देवगन पहली बार किसी टीवी शो में एंकरिंग करते दिखेंगे। आली रे आली आठा माझी बारी आली, जिससे उनके फैंस के बीच गजब का जो उत्साह है वो देखने मिल रहा है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बनी रहिएगा रेडियो।

एंजॉय किया ये गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते इंडिपेंडेंस डे के लंबे वीकेंड पर रिलीज हो रही इमरान हाशमी की आवारापन 2 की एडवांस बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है। 19 साल के बाद लौट रहे शिवम पंडित के इस सिक्वल पर मेकर्स ने बहुत बड़ा दांव खेला है। वही साउथ के रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक का एक नया बियर्डलेस लुक, जी हाँ, यश और विदाउट बियर्ड। आपने कभी इमेजिन किया था? मैंने भी इमेजिन नहीं किया था, लेकिन विदाउट बियर्ड उनका लुक जो है वो इंटरनेट पर सुबह से ही तहलका मचा दे रहा है, ज़बरदस्त वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। कियारा आडवाणी के पति जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी कियारा और यश की इस फिल्म के डार्क विजुअल्स की आज जमकर तारीफ करी है। ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है बहुत अलग सा लग रहा है एंड ट्रेलर में कुछ भी नहीं समझ रहा है कि फिल्म में होने वाला क्या है, इसलिए फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है ऐसा

मतलब खेल की बात ना हो, ऐसा निर्वाणा नाइट से शो में कभी हो सकता है क्या? तो सिनेमा के बाद अब रुख करते हैं सीधे खेल के मैदान की तरफ, जहां हमारे लोकल कॉलेज फुटबॉल को लेकर आज का बड़ा अपडेट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना UNC के प्री सीजन फुटबॉल प्रैक्टिस के बीच जनरल मैनेजर माइकल लोम्बार्ड के खिलाफ चल रही अंदरूनी जांच के कारण टीम का माहौल काफ़ी गंभीर बना हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन बहुत जल्द इस जांच की फाइनल रिपोर्ट जो है वो बता सकती है, एंड उसके बाद खेल और सिनेमा के इस बिल्कुल ताज़ा और शानदार रोमांच के बाद चलिए आपके मूड को और थोड़ा एनर्जेटिक बनाते हैं एंड एंजॉय करते हैं अगला गाना। उससे पहले बस मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो मंडे की शाम है ये कैसे चल रही है, और गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रफ्तार पर नियंत्रण अगर हो तो गाड़ी इजीली कंट्रोल में रह सकती है। एंजॉय करते हैं अगला गाना।

से सेट करके रखी है मंडे की वाइब। मैं यही कह रहा था कि मैंने एक रेडियो नायरा के साथ और रेडियो नायरा और मैंने मिलकर एक कैंपेन चालू किया था, नो स्क्रीन फॉर 2 आवर्स। आपको याद है या भूल गए? हमारे एक पुराने लिसनर अमित ने हमें ये पूछा कि आपका जो कैंपेन है वो कैसे चल रहा है, आज भी लोग आपके कैंपेन में जुड़ रहे हैं क्या? तो टू बी फ्रैंक अमित, ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने थोड़ा अपडेट करना बंद कर दिया था रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स ये शो पर, तो यूज़र्स लिसनर्स जो है हमारे वो बहुत कम मात्रा में अभी इस बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, उनका यही कहना है कि 2 आवर्स हमने स्क्रीन नहीं देखी तो उनके लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस, बदलाव जो है वो आ गए हैं। एंड थिंग इज़ दैट कि वो लोग काफ़ी अच्छे से नींद ले पा रहे हैं एंड बहुत अच्छी चीज़ें उनके लाइफ में चल रही है, लाइक फोकस ज़्यादा रह रहे हैं, जो शिकायतें थी लाइक लेजीनेस रहता था, डलनेस जो रहता था वो अब नहीं होता है। लेकिन मेरे लिसनर्स की अगर फरमाइश है कि ये कैंपेन को दोबारा शुरू किया जाए तो

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
0: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
0: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
0: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

एंजॉय किया ये गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है महफिल में कुछ शेर आपके साथ शेयर करने का एंड आपके दिलों तक मेरी कुछ पंक्तियां पहुंचाने का। आपके डायरी के लिए ये पेश है बिल्कुल एक नया शेर। चलते रहने का नाम ही जिंदगी का सफर है, चलते रहने का नाम ही जिंदगी का सफर है, यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी और नया सवेरा मिलता है। सही है ना यार, यहाँ हर एक मोड़ पर नई कहानी और नया सवेरा मिलता है। थका दे चाहे दिन भर की इस मंडे की भागदौड़, मंडे नई शुरुआत रहती है, भागदौड़ काफ़ी रहती है, हफ्ते भर का लाइनअप होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि थका दे चाहे दिन भर की इस मंडे की भागदौड़, पर शाम को अपनों के साथ ही सुकून का बसेरा मिलता है। जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, हमारे फैमिली के लिए तो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कह रहा हूँ कि शाम को अपनों के साथ ही सुकून का बसेरा मिलता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाण।

आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड कैसे हैं आप सब लोग, एक रिस्पॉन्सिबल रेडियो जॉकी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आपके गाड़ी को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मौसम जो है ऐसे मौसम में विजिबिलिटी जो है वो आपके कार की थोड़ी कम हो सकती है। दैट्स वाई थोड़ा आराम से आपको चलाना है गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी का अगर आपकी रफ्तार अगर नियंत्रण में रहती है तो गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, वही आपकी रफ्तार बहुत तेज़ है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई रफ्तार पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के लिए चुप रहना ही बेहतर होता है। क्या होता है, दो पर्सन में आर्ग्यूमेंट्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते होते इस कदर बढ़ जाती है क्योंकि एक पर्सन जो है वो काम नहीं रहता है, वो बोले जाता है। एंड गुस्से का जो टाइम रहता है ना, वो कुछ समय कुछ मिनटों के लिए रहता है, वहाँ पे आपको चुप रहना है। बाद में गुस्सा शांत होने के बाद यू कैन पुट योर वर्ड्स कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन उस दौरान काम रहना है ये एकमात्र समय।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाणा नाइट्स एंड मैं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, सात से दस में रहता हूँ, आपके साथ मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था, अब आप सब लोग घर पे आ गए हैं अपने फैमिली के साथ, डिनर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड आज भी अगर फैमिली के साथ सब एक साथ अगर आप बैठ कर डिनर कर रहे हो तो लकी हो तुम। पुराने ज़माने में हम सब लोग साथ में बैठ के फैमिली के साथ बैठ के डिनर किया करते थे एंड इट वॉज लाइक, तब सोचा भी नहीं था कि ये एक आगे ड्रीम रह जाएगा कि हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तब तो ऐसे लगता है था कि यार फैमिली है, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन जॉब के लिए या फिर करियर बनाने के लिए बहुत सारे लोग बाहर पड़ गए और उसके बाद फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना ये भी एक ड्रीम बना हुआ है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप अगर आपके फैमिली के साथ आज बैठकर खाना खा रहे हो सारे मेंबर्स, तो वो जो चर्चाएँ होती है, वो बातें होती है, वो तो मतलब एक्सप्लेन क्या ही करूँ मैं वो चीज़ों के बारे में। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

एंजॉय किया आपने ये गाना। ये गाना मतलब ऐसा गाना था कि वाकई में जिसने मंडे की वाइब जो है वो सेट कर रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बदाम नाइट्स, एंड मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे लिसनर्स घर पहुंच चुके हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं उनका मील। कुछ लोग पहुंचने के बाकी है, कुछ लोग तो बस कल के बारे में सोच रहे हैं कल क्या करना है, और इस भागदौड़ भरी लाइक मंडे का दिन भागदौड़ चल रही थी और अब जाके बहुत सारे लोग रिलैक्स हो रहे हैं। एंड रिलैक्स होना है, चील करना है, एंजॉय करना है रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को। 7 से 10 का ये जो टाइम होता है मेरे प्यारे लिसनर्स के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। थैंक यू सो मच, रेडियो नायरा के साथ बने रहिए। एंड मैं यही कह रहा था, अभी तो रिलैक्स होकर बढ़िया कुछ एंजॉय कीजिए। अगर कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो लिमिट में मीठा भी खा लेना चाहिए, कभी कभी तो मीठा खाना बनता है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। मिलूंगा कल आपको इसी टाइमिंग पर रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट से। मेरा शो चलता है 7 से 10 में, रहता हूँ आपके साथ। मिलते हैं कल, गुड नाइट।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

ಸುಂದರಹಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾಡಾ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

शामिल है वो कौन?

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Hey guys, hit the subscribe button right here to catch more of The Shockie.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: I'm sorry.
1: क्या कहा आपने?
0: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
1: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.

to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490 AM.

I am back, guys. Finally. Good morning. Good morning. Aapne tune in kiya hai Naira Rally Drum. Paka Desi, Paka Local on 99.9 FM HD4, 101.9 FM 4090 AM Wayushi. And aap sabhi ka swagat hai. Zara muskurao mein. Yes, I'm all back. I am all good. I am hopefully not going to get sick again is what I'm hoping. Aap bhi mere liye hope kijiye. Because pichle 4-5 din mera cough jo hai wo itna zyada bhayanak ho gaya tha ki I was not able to speak. So, yeah. Isliye main aap logon se milne hi nahi aa payi. Aap logon se baat karne hi nahi aa payi. And me being a person jise continuously baat karna bahut hi zyada pasand hai, it was difficult. It was difficult. मेरे घर वाले थोड़े खुश थे कि चलो घर में शांति है बहुत दिनों के बाद. But yeah, मैं ऐसी थी कि क्या ही कर सकते हैं, मुझे मेरे गले को आराम देना पड़ेगा. अदरवाइज मैं फिर मतलब मुझे और शायद से छुट्टी लेनी पड़ती थी कि आपसे मैं बात नहीं कर पाऊँ और आराम करना पड़े. So yeah, finally I'm here. मेरी खांसी almost ठीक हो गई है. एंड मतलब ठीक चल रहा है यार. हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, बढ़िया. लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. अगस्त के 11 दिन हो चुके हैं ऑल रेडी. 10 दिन आज का 11वां है बाय द वे. सो या हियर वी आर. वी कैन बी टॉकिंग अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द ट्राइंगल. बाकी और आजू बाजू में क्या चल रहा है, सारे अपडेट्स एंड एवरीथिंग. इसलिए आप भी कहना चाहिए, मैं भी कहनी चाह रही हूँ. सुनते रहिए नायरा रैली ड्रम, हुआ शेफ के साथ.

0: बेस्ट हिट्स।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: कंटेम्पररी एंड क्लासिक ज्वेलरी डिजाइंस टू फिट एवरी ओकेजन, खन्ना एंड सन्स ज्वेलर्स हैज यू कवर्ड फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स। वी क्राफ्ट द प्योरेस्ट 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डैजलिंग डायमंड्स ज्वेलरी विद टॉप क्वालिटी एंड फिनिश। वी ऑफर बेस्ट वैल्यू इन ज्वेलरी अलॉन्ग विद टॉप क्राफ्टमैनशिप एंड फेयर मेकिंग चार्जेस। गोल्ड बाय बैक, इजी 12 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग अवेलेबल। Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193888.
0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka desi, pakka local.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. महुआयुशियन आप सुन रहे हैं, जरा मुस्कुराओ. वैसे हम एकदम हमारा पीक समर टाइम वेदर तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं. एकदम ज्यादा धूप, गर्मी, मकीनेस एंड उसके साथ साथ एक स्टॉर्म्स की छड़ी, लिटरली मतलब बरसात की एक लड़ी. एंड आज का दिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेदर अलर्ट डे बिकॉज वी हैव अ चांस ऑफ स्ट्रॉन्ग टू सीवियर स्टॉर्म्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द इवनिंग कम्यूट. सुबह ठीक ही रहेगा, मतलब अभी एट सच उतना नहीं लगेगा कि बारिश आ रही है एंड हमारा मॉर्निंग कम्यूट अफेक्ट हो रहा है, बट इट इज जस्ट गोइंग बी अफेक्टिंग हमारा इवनिंग कम्यूट. वी अदरवाइज हैव लॉट्स ऑफ सन, वी हैव लेट डे स्टॉर्म्स एंड सन एंड स्टॉर्म्स के चलते आज हमारा मगी मीटर भी ज्यादा है. आज इट्स गोइंग बी इवन हॉटर बिकॉज हाइज आर गोइंग बी इन द मिड 90s एंड वी आर अंडर अ लेवल 1 रिस्क आउट ऑफ 5 फॉर सीवियर थंडर स्टॉर्म्स जो हमें शाम को एक्सपीरियंस करने मिलने वाले हैं. अब लेवल 1 रिस्क क्या है, तो इट बेसिकली इंडिकेट्स दैट लोकलाइज्ड विंड डैमेज इज गोइंग टू बी पॉसिबल. एकदम फ्लडिंग तक नहीं पहुंचने वाली है बात, बट यस, localized wind damage is possible. It is just going to be hot. Heat index is going to be in the lower hundreds. So, yeah, hydrated rahiye, beech beech mein breaks lete rahiye, khud ka khyal rakhiye. Do not ignore heat exhaustion related signs because even though barish ho rahi hai, jo mugginess hai, jo heat index ke values hum dekh rahe hai triple digits mein, uske chalte aisa ho sakta hai ki thoda sa heat exhaustion ho jaye. Isliye beech beech mein breaks lete rahiye. Keep yourself hydrated and take care of yourself. Sunte rahiye Nairali Drum, Mahuayu Shep ke saath.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल में। हुआ आप सुन रहे हैं, जरा मुस्कुराओ। वेक काउंटी के सारे जो स्कूल रिसोर्स ऑफिसर्स हैं, दे गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग अलग अलग प्रकार के वेज टू इम्प्रूव स्कूल सेफ्टी। एंड अब स्कूल्स ऑलमोस्ट शुरू होने वाले हैं, तो दे आर लाइक यू नो जस्ट अहेड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कैलेंडर ईयर। वी वांट टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ स्कूल इज बैक इन सेशन फॉर ट्रेडिशनल वेक स्टूडेंट्स इन वेक काउंटी ऑगस्ट 24th से। एंड एज किड्स आर गेटिंग रेडी टू रिटर्न टू उनके क्लासेस, SROs एंड जो भी सारे स्कूल लीडर्स हैं, आज वो एक समिट होस्ट करने वाले हैं एट मिलब्रुक Magnet High School, and they're going to be reviewing sare naye safety strategies wahan pe. So the summit will include a tabletop exercise that will allow sare SROs to explore alag alag responses to different crisis scenarios, and the district will then provide ek update at the summit on this particular summit at most probably sham ko hame pata chal jayega ki exactly kya situation hai. Aaj ka jo unka ek key topic rehne wala hai, it is going to be the district's new standard response protocol during emergencies. And this is a new procedure which is designed to ensure ki law enforcement and school staff are using the same language during emergencies, because aise na ho ki emergency hai, hum communicate kar nahi paaye and cheeze got lost in translation and uske chalte help nahi pahunchi. So yeah, it is about making sure that there's a common way to identify everything that happens taki uska jo response rahega wo bhi utna hi prompt rahega. So aaj they're going to be discussing all of these things, and jaise iske updates aayenge, yes, we are going to be talking about them. Stay tuned. मैं हूं आयुषी आपके साथ।

0: टाइटर कर्फ्यू अपेरेंटली. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो लीडर्स विद द शार्लेट मिकलनबर्ग पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी एक केस रखी है इन फ्रंट ऑफ द शार्लेट सिटी काउंसिल, एंड उसमें दे आर बेसिकली प्रपोजिंग अ टाइटर कर्फ्यू फॉर एवरी वन अंडर 18 एज द सिटी इज टैकलिंग यूथ क्राइम एंड सो कॉल्ड टीन टेक ओवर्स. सो कल रात ही उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें इन सारी चीजों के बारे में बात की. एंड अब टीन टेक ओवर्स एग्जैक्टली क्या है, तो दीज अकर व्हेन हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीट टीन्स शो अप एट अ पब्लिक स्पेस एंड देन दैट गैदरिंग क्विकली बिकम्स अ पब्लिक सेफ्टी चैलेंज. And SMA, they are like, you know, we are worried that these teen takeovers will eventually become fatal. So, ये जो कल proposal रखा गया है, इन सारी चीजों को tackle करने के लिए रखा गया है. And the proposal is a 9 PM curfew. 9 PM का curfew for anyone under 18. Obviously, there are exceptions for work, school, sports and बाकी approved activities. This is a little bit tricky because बहुत सारे council members ने कहा है that they are not ready to commit to the proposal without more clarity on what happens to the youth if they don't comply, या फिर उनके parents को क्या face करना पड़ेगा. The proposal suggests violations would result in juvenile sentencing for repeat offenders, but they are like कि 9 बजे के बाद कोई भी अगर बाहर नहीं निकलेगा तो ये मतलब अलग प्रकार की पुलिसिंग हो गई ना. सो दे आर लाइक कि वी मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग इशू, बट दिस शुड नॉट बी द ओनली सोल्यूशन कि हमने एक कर्फ्यू लगा दिया एंड 9 बजे के बाद कोई भी 18 के अंडर वाला जो बच्चा है वो बाहर नहीं निकलेगा. सो देयर इज गोना बी अनदर मीटिंग, देयर गोना बी वोटिंग एंड देयर गोना बी सीइंग हाउ दिस गोज एंड एवरीथिंग. सो दिस इज अ वोट सेट फॉर अ फ्यूचर डेट, सो लेट्स सी. उसमें ऑब्वियसली चेंजेस तो चाहिए बिकॉज दिस इज थोड़ा सा वियर्ड, बट या
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

going to a luxury resort. आपने ट्यूनन किया है नैरली ड्रम पकारी सी पका लोकल. मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. पता है रॉकी माउंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर हेडेड टू अ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, एट लग्जरी होटल इन वर्जीनिया. और दूसरी जगह हंड्रेड्स ऑफ रेसिडेंट्स आर स्टिल विदाउट पावर. सो एम्प्लॉयज विद द इलेक्ट्रिसिटीज कॉन्फ्रेंस विच इज बींग हेल्ड एट द ओमनी होमस्टेड रिजॉर्ट इन हॉट स्प्रिंग्स ने कन्फर्म किया

रही थी कि ये लोग बैठ के थोड़ी सी मतलब चीज़ें अच्छे से डिस्कस नहीं करते हैं क्या. आपने ट्यून इन किया है नाजराली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं ज़रा मुस्कुराओ. सो बजट पास हो गया. बजट पास होने के बाद हमें पता चला कि चलो फाइनली जो मच नीडेड रेजेस थे टीचर्स के लिए वो उनको मिलने वाले हैं. बट उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ डेटा एनालिसिस हमें पता चला है दैट वेक काउंटी के टीचर्स आर स्टिल गन बी अर्निंग लेस ऑन एवरेज देन देयर पीयर्स इन कंपेरेबल साउथ ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन एरियाज. सो वो रेज के बाद भी कम ही पैसे कमाने वाले हैं एज कम्पेयर टू अदर एरियाज. एंड दैट्स डिस्पाइट अ रीसेंट स्टेट बजट दैट ड्रास्टिकली बूस्टेड उनका टीचर पे एंड प्रोवाइडेड मोर मॉडेस्ट पे इंक्रीजेस फॉर मोर एक्सपीरियंस टीचर्स. मतलब इसके पहले तो वो कितना ही कम कमा रहे होंगे. मतलब द सिचुएशन इज वेरी डायर ऐसा हमें ओवरऑल पता चल रहा है. एंड स्टेट बजट के बाद वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है. Now the state provides the vast majority of teacher compensation in the state and counties provide some but relatively bahut hi kam paise wo usme ye karte hain. Add-ons jo hote hain wo bhi wo usme add kar lete hain. Baki sara jo hai wo state provide karti hai. School districts in the state have no taxing authority and like in many other nearby states, so they cannot alone raise funds to increase unka teacher pay. Baki states jo hai they also contribute to teacher salaries and hamare jo neighboring states hai they pay more to unke first year teachers or more to later career teachers or both. And overall hamare yahan pe jo pay nazar aa raha hai teachers ka wo comparatively kam hi hai. So the salary schedule data shows that there is a gap which is simply too large to have been overcome by state लॉ मेकर का सिग्निफिकेंट पे रेज जो अभी स्टेट बजट में पास हुआ. एंड दैट इज नॉट लाइक मेड एनी काइंड ऑफ लाइक अ सिग्निफिकेंट चेंज ऐसा हम जरूर कह सकते हैं. सो वीक टीचर्स आर स्टिल अर्निंग सेवरल थाउजेंड डॉलर लेस पर ईयर देन दे वुड इफ दे वर्क इन अ डिफरेंट साउथ ईस्टर्न कम्युनिटी विद अ स्मॉलर कॉस्ट ऑफ लिविंग. सो या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सैलरीज उतनी रह रही है, रादर कम है. और एंड ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नहीं नहीं सब एकदम चंगा होगा, सब अच्छे से काम करेंगे, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. इट इज दिस इज वेरी अलार्मिंग. स्टेडियम में हूँ आयुष के साथ.

0: almost ready. Hello जी, welcome back. आपने ट्यून किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. Exactly एक हफ्ता बचा है एंड एक हफ्ते के बाद हमें सारे जो दिग्गज खिलाड़ी है वो एक जगह पे दिखने वाले हैं फॉर द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स. इट इज हैपनिंग दिस ईयर एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली. एंड अब एक हफ्ता बचा है तो दैट स्टेडियम इज रिसीविंग उसके फाइनल टचेस आफ्टर एक एक्सटेंसिव रेनोवेशन विच वॉज जस्ट एम्ड एट इंश्योरिंग कि जो हमने इंडिया ओपन के वक्त प्रॉब्लम्स फेस किए थे वो फिर से फेस ना करने पड़े बिकॉज दैट वॉज एम्बेरसिंग. सो वन ऑफ द फोर कॉम्पिटिशन कोर्ट्स इज रेडी. Still working on the remaining courts and baki ke part of the stadium is still in the final stages. There's still like a lot of kaam to be done before the tournament starts. And jo venue ki seating capacity hai, it has also been increased to 7,500 with 2,500 seats added for the marquee event. So during a media tour of the venue yesterday, hum dekh pa rahe the ki workers were seen carrying out finishing work across the complex, including cleaning and polishing seats and preparing the playing and spectator areas. एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि जहाँ पे सारे प्लेयर्स आके रहने वाले हैं वो जगह भी अच्छी है, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कोर्ट्स भी अच्छे हैं. सो अपेरेंटली द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज स्पेंट अप्रॉक्सिमेटली 20 करोड़ रुपीज, ऐसा उन्होंने बताया है, ऑन रेनोवेशन वर्क एट द वेन्यू. सो हम होप कर रहे हैं कि जो भी इसका फाइनल आउटपुट रहेगा वो अच्छा रहेगा. एंड इंडिया ओपन जैसे एम्बेरेसिंग चीजें बाहर के प्लेयर्स को फेस नहीं करनी पड़ेगी एंड हमें भी नहीं फेस करनी पड़ेगी कि नहीं भैया हमारा तो वेन्यू एरोगेटी है, ठीक ही है. We are hoping for that. So all the very best to all the champions jo wahan pe khelne wale hain because it is world championships, the pressure is high. And yeah, obviously hamari sari jo badhaiya hain, shubhkamnaye hain, wo hamare Indian badminton players ke saath to hai hi. Stay tuned na hoye.
1: Naya saal, nayi umeedein, naye gaane, naye sapne, nayi baatein naye saal par. Sab kuch naya, sirf Radio Nayra par.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. कोलंबिया में एक बड़े से अर्थक्वेक के बाद हमें जो वहां से अपडेट्स आ रहे हैं वो ऐसे है दैट एटलीस्ट 132 पीपल हैव डाइड, 570 हैव बीन इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अर्थक्वेक. इट वॉज अ मैग्नीट्यूड 7.4 का अर्थक्वेक दैट स्ट्रक इन वेस्टर्न कोलंबिया अकॉर्डिंग टू द कोलंबियन एसोसिएशन ऑफ कैपिटल सिटीज. एंड वहाँ पे अब जो रेस्क्यू एफर्ट्स है वो एकदम जोरों शोरों से चल रहे हैं. सो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आर लिटरली ऑन देयर टोज. दे आर रेसिंग टू डिग पीपल आउट ऑफ द रबल एंड बहुत सारे कोलैप्स स्ट्रक्चर्स वहाँ पे नजर आ रहे हैं. उसमें से एक पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल सेक्शंस भी थे of a hospital, and the government has declared a national disaster and deployed soldiers to the area as well to make sure ki wahan pe jitni madad available ho sake utni honi chahiye. The epicenter was located at San Jose del Palmar, ek underdeveloped area hai of western Colombia, and the tremor was felt strongly in the nation's capital as well, with alarms sounding and people evacuating to the streets as a precaution. But ab rescue workers jo hai, they are making sure that you know they are searching for survivors. Sab jagah they were already searching through the night for survivors amid the rubble of collapsed buildings, and abhi bhi wahan pe rescue operations jo hai wo filhal chal rahe hain. जो भी जैसे ही अपडेट्स आते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगी. हमारी बहुत सारी प्रेयर्स एंड हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस वहाँ के लोगों के साथ है कि वो इससे जल्द से जल्द बाहर निकलें, इससे जल्द से जल्द यू नो ये कर पाए. सो या हमारी बहुत सारी प्रेयर्स वहाँ के लोगों के साथ है. स्टे ट्यून्ड हमारी शब्द के साथ.

कह रहे कि हमें नहीं पता भाई क्या चल रहा है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट. आपने ट्यून इन किया है नायरा अली ड्रम पका देसी पका लोकल, मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. क्या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगी या फिर दिल होल्ड देम स्टेडी एट इट्स मीटिंग अगले महीने जून की मीटिंग होने वाली है तब. ऐसे और बहुत सारे सवाल है जो अभी फिलहाल मार्केट के मन में चल रहे हैं कि एग्जैक्टली फेड्स क्या करने वाले हैं, हमें नहीं पता. अब फॉर द मार्केट दिस इज अ कॉइन फ्लिप बिकॉज ऑड्स ऑफ अ रेट हाइक इन सितंबर आर नियर 50% व्हाइल ऑड्स ऑफ कीपिंग रेट्स स्टेडी आर नियर 50%. सो ये 50-50 चांसेस के चलते देयर लाइक कि हमें नहीं पता क्या होने वाला है. एंड जो वोलेटाइल जॉब नंबर्स हमने देखे हैं, स्टबर्न इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, एंड ऑल्सो द चेंजेस टू द फेड्स कम्युनिकेशन स्टाइल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली स्टरिंग अप लॉट ऑफ अनसर्टनटी इन मार्केट्स एंड इट इज रेजिंग द स्टेक्स फॉर अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा रिलीजेज एज वेल, इंक्लूडिंग दिस हफ्ते का इन्फ्लेशन रिपोर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल इज इट इज गोइंग टू काइंड ऑफ फोरशैडो थिंग्स कि एग्जैक्टली फेड्स क्या करेंगे क्या नहीं. अब जो ट्रेडर्स है दे आर लुकिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा जो अभी वेंसडे को यानी कि कल रिलीज होगा फॉर मोर गाइडेंस ऑन वेदर इन्फ्लेशन इज कूलिंग और नॉट. एंड द सर्ज इन एनर्जी प्राइसेस बिकॉज ऑफ द वॉर हैज ऑल्सो रेज्ड एक्सपेक्टेशंस फॉर हायर फेड रेट्स बाई ईयर एंड, बट द मार्केट रिमेन्स डिवाइडेड ऑन द टाइमिंग ऑफ एनी रेट हाइक्स वाइल न्यू डेटा कंटिन्यूज टू शिफ्ट बेट्स. सो मार्केट्स ने बेसिकली 50% चांस रखा है दैट द फेड होल्ड्स रेट स्टेडी इन सेप्टेम्बर, बट इट इज स्टिल अ चेंज फ्रॉम वन वीक अगो जब द ऑड्स वर एट 67% एंड देयर लाइक नाउ वी आर 50-50, वी डोंट नो व्हाट माइट हैपन एंड देयर लाइक वी डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट. सो देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मार्केट्स एंड जिसके चलते या मार्केट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं. स्टेडियम में हूं आयुष के साथ.

Hello, hello, welcome back. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल में हुआयुशी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आज माउंटेन डे है बाय द वे. वी आर सेलिब्रेटिंग माउंटेन्स. वी आर सेलिब्रेटिंग दीज मजेस्टिक लैंड मासेस जो दूर से देखने से एकदम ऐसे मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है. अजीब सा इन द सेंस कि यू आर जस्ट इन ऑ ऑफ द ह्यूजनेस ऑफ इट कि भैया कितने बड़े हो सकते हैं माउंटेन्स. लाइक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल लाइक इतने बड़े. पर या दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेटाफोरिकल डे कि आज आप आपके सामने जो आपके लाइफ का माउंटेन है आप उसको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं. इट इज़ अबाउट दैट स्पिरिट एज वेल. आज नेशनल सन एंड डॉटर डे है. सो फॉर पेरेंट्स इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग द चिल्ड्रेन. आज नेशनल प्रेसिडेंशियल जोक डे है एंड दैट इज The only thing that I have to say about it, it's pretty self-explanatory, so aap decide kijiye. Then we have afternoon tea week going on. Hamare yahan pe to matlab afternoon chai is a ritual, to mujhe alag se batane ki zarurat nahi hai. Aaj plain the sand day hai by the way. And given hamare yahan ke temperatures obviously aisa lagega ki jaake ek pani mein dubki maar ke aaye, thoda sa beach ghoom ke aaye taki thoda acha lagega. So you can, you know, plan accordingly. I know Tuesday hai but fir bhi. Aaj national raspberry bombay day hai. So Yeah, you can, you know, just like indulge in this badhiya sweet thing, sweet dish as well. And these are all the occasions for today. Have fun with them. And Sundar Hiena Rally Drama, why you share with me.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

We all know that Desi mothers have this obsession with long hair. आपने tune in किया है Narrali Drum में Mayushi and आप फिलहाल मेरे साथ enjoy कर रहे हैं जरा मुस्कुराओ. So almost to the point till I actually went for my college, मेरे बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल थे and obviously it was because कि my mom wanted for me. She was like कि बाल नहीं काटने बिल्कुल. And then मेरा तब तक का routine ऐसे था कि एकदम चम्पी करके पचापच तेल लगा के you know मैं मेरे बालों को मेंटेन कर रही थी बेसिकली. And it is no wonder, given the obsession for long hair, especially from Desi mothers, that an Indian woman has earned the Guinness World Record for her long locks, which were measured at 8 feet and 10 inches in length. And मैं ऐसी थी कि my goodness, 8 feet मतलब एक normal average height से भी लंबे है. So she hasn't cut her hair since 2015 and it's been almost 11 years कि वो अपनी बाल बढ़ा रही हैं. So she's already a content creator who shares अलग अलग प्रकार की beauty tips on social media and recently she was awarded the title for the longest hair on a living person, female. And she took the record from a Ukrainian woman whose hair was measured at 8 feet and 5.3 inches. तो ये 5 inches ज्यादा है. ये सब हो गया, मैं मतलब खुश थी उनके लिए कि वाओ यार सो गुड. आई मीन बट मैं ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मम्मी के लिए इतने भी बाल इनफ नहीं होंगे. शिल्पी कि नहीं नहीं इससे और अगर थोड़े से बढ़ जाते तो मजा आ जाता. अब मेरे सबसे छोटे बाल है, एकदम ही बॉब कट है. सो आई वाज लाइक या अब ना हो पाएगा बिकॉज द मेंटेनेंस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस बड़े लंबे बाल को मेंटेन करना. It is not easy, guys. बहुत time लगता है बाल धोने के लिए. But now I'm happy. But yeah, congratulations to this person as well. Stay tuned, my wife.

हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो एपेक्स का जो हिस्टोरिक फायर स्टेशन 1 है, उसका एग्जैक्टली क्या होगा, इसके रिलेटेड आज से कॉन्वर्सेशंस शुरू होने वाले हैं. अब सम कम्युनिटी मेंबर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द रीलोकेशन ऑफ द फायर स्टेशन एंड देन द पेटिशन टू प्रिजर्व दिस फायर हाउस. एंड उस पेटिशन को ऑलमोस्ट 1300 सिग्नेचर्स मिल चुके हैं. 1300 पीपल हैव साइंड दिस पर्टिकुलर पेटिशन टू सेव द फायर स्टेशन. सो अब ऐसे में टाउन काउंसिल थोड़ी सी डिलेमा में पड़ गए कि एग्जैक्टली क्या करना है भैया, देखना पड़ेगा. सो द टाउन काउंसिल इज गोइंग टू बी कंसिडरिंग अ बजट अमेंडमेंट टू फंड रिसर्च फॉर द स्टेशन वन साइट, एंड दिस इंक्लूड्स अ मार्केट एनालिसिस ऑफ द बिल्डिंग्स लोकेशन. देन देर गोइंग टू बी टेस्टिंग अलग अलग बिजनेस आइडियाज एज वेल कि यू नो अगर हम इसका रीडेवलपमेंट कराते ही है तो वट काइंड ऑफ इनकमिंग वेंचर्स अगर बी सक्सेसफुल फॉर द बिल्डिंग. द स्टेशन हैज सर्व द डाउनटाउन एपेक्स कम्युनिटी फॉर मोर देन 70 ईयर्स. सो ऑब्वियसली लोगों के इमोशंस इस पर्टिकुलर जगह के साथ जुड़े हुए हैं. जुलाई में हमने देखा दैट द एपेक्स टाउन काउंसिल अप्रूव द एक्सपांशन ऑफ स्टेशन 3 विच इज लेस देन 1 माइल अवे फ्रॉम स्टेशन 1. एंड जब स्टेशन 1 के बारे में बात हुई तो लोगों ने आके कहा कि नहीं नहीं, हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, यहाँ पे नई चीजें आपको क्यों लानी है. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ प्लानिंग मीटिंग. देर आर गोइंग बी अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक कमेंट एज वेल एंड दे आर गोइंग बी प्रोवाइडेड लेटर. बट या आज से बेसिकली उसके रिलेटेड जो कॉन्वर्सेशन है वो शुरू हो जाएंगे ऑफिशियली, एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली वो लोग क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं. स्टे ट्यून्ड.

हेलो जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे थे जरा मुस्कुराओ. एंड नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. यस, टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है. मतलब बीमारी में मेरे अगस्त के 10 दिन ऑलमोस्ट चले गए हैं ऑलरेडी. वैसे भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इतना फास्ट जाता है, मैं ऐसे रहती हूँ कि यार क्या ही पॉइंट है मतलब. एंड उसमें से भी अब बीमारी में मेरे 10 दिन चले गए, अगस्त ऑलमोस्ट मतलब आधा हो गया. बट आई स्टिल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ अगस्त एंड यू ऑल्सो लाइक स्टिल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ अगस्त. सो वी आर गोइंग टू बी मेकिंग द मोस्ट ऑफ अगस्त, डोंट वरी अबाउट दैट. बहुत सारा मोटिवेशन मैं आपको देती रहूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. बहुत सारे आपके फेवरेट बॉलीवुड के गाने आपको सुनने मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. उसके लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज रेडियो नायरा USA. इट इज अवेलेबल ऑन बोथ ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर. वेरी वेरी इजी टू डाउनलोड, वेरी वेरी इजी टू यूज एंड वेरी वेरी इजी टू लिसन टू एज वेल. मतलब हम रहते हैं यार, सो लाइक not. So yeah, do download हमारी app. बाकी सारे updates तो मैंने दे दिए हैं. आज जो भी होगा कल उसके बारे में जरूर बात करेंगे, because yeah, Mondays and Tuesdays are very very busy days in the triangle. So we are hoping कि आज जो भी चीजें होने वाली है, meetings होने वाली है, उनके सारे updates हमें कल तक मिल जाएंगे. So we are going to be speaking and talking about that as well. बाकी मैं अभी चलती हूँ, खुद का ख्याल रखिए, stay hydrated and सुनते रहिए आपके favorite Bollywood के गाने नायरा राली ड्रम पे और 99.9 FM HD4 101.9 FM 4090 AM. Bye bye, take care, stay safe and have a sundar divas ahead and see you tomorrow. Bye.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद। अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है। हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड टॉक। विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शो केसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लायर एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस्मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 और 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डून सेंटर। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। नाइन जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। नाइन जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पकड़े।

0: ब्लॉसम ब्लॉसम गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM, 99.9 FM, LG3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर।
1: हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है। कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई। Can't miss the night under the light, known as Mr. Saturday Night. Party is set to deliver an unforgettable show packed with the chart popping and topping with his high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है। इसकी और जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD 4 49 AM 99.9 FM HD 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर्स मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profits. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson Ave. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ब्यूटीफुल गाना आप लिसन ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 फॉर तेलुगु नायरा सेम मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूज एंड टॉक।
1: वेलकम आवर ट्रायंगल में 38th नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the MCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो 9।

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

Is the multi-dollar Gaadi Kebab one more time? Welcome, Haji, on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se, main hoon aapki apni Monica, aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415 डॉट विक्स बोरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स बोरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स बोरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio 9 aur pakka dijiye pakka local.

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका, और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आपको पता है, जब मैं नया नया स्कूटी चलाना सीख रही थी, मैं स्कूल में थी और मैं इतना गिरती थी ना, आए दिन मुझे चोट लगी हुई होती थी। और शायद इतने गिरने की वजह से आई कैन राइड स्कूटी वेरी फाइनली नाउ। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो, ये तो छोटे मोटे एक्सीडेंट की बात है जिसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ था, बट यहाँ ए आर रहमान के सन के साथ में म्यूजिशियन ए आर अमीन है, मतलब ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कार एक्सीडेंट नियर चेन्नई काथीपारा फ्लाई ओवर ऑन संडे इवनिंग। अमीन वॉज ट्रेवलिंग विद अ फ्रेंड व्हेन हिज पर्स रिपोर्टेडली कोलाइडेड विद अ वेगनार दैट एंटर्ड द मेन रोड फ्रॉम साइड रोड। बोथ सस्टेन माइनर इंजरीज एंड वर टेकन टू कावेरी हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट बिफोर being discharged. The person traveling in the Wagonar was also injured and was taken to Kalingar Sanitary Super Speciality Hospital. The occupants were later discharged after receiving medical attention. Police has seized both vehicles as part of investigation, while a case has been registered to determine the exact circumstances surrounding the crash. I hope both the families, both the person are in okay condition and they are healing soon. Well, stay tuned for more. I'll

क्या आपने कभी कौन बनेगा करोड़पति देखी है? मतलब मुझे तो कौन बनेगा करोड़पति बोलते ही पहले उसका बीजीएम याद आता है, और उसके बाद में मुझे अमिताभ जी का चेहरा याद आता है। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो माधुरी दीक्षित इज ऑल सेट टू होस्ट कौन बनेगा करोड़पति इन मराठी वर्जन ऑफ द आइकॉनिक क्विज शो, एंड शी सेड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द शो दैट इंस्पायर्स पीपल थ्रू द पावर ऑफ नॉलेज एंड डिटरमिनेशन। फॉर मी कौन होनार करोड़पति इज मच मोर देन अ क्विज शो, इट सेलिब्रेट्स क्यूरियोसिटी, एस्पिरेशन, होप एंड द करेज टू ड्रीम। एज अ प्राउड महाराष्ट्रियन आई एम एक्साइटेड टू मीट कंटेस्टेंट, हियर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज एंड विटनेस देयर ड्रीम्स अनफोल्ड ऑन द आइकॉनिक हॉट सीट। आई लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग दिस इनक्रेडिबल जर्नी with audiences while celebrating the true spirit of knowledge and preservance. I think this is a huge chance and it is a huge thing for Madhuri Dixit kyunki yaar bahut hi legend show hai kaun banega karodpati because of Amitabh ji obviously, and we would love to see her as the new host of that Maharashtrian show. Well, stay tuned for more. I'll be back.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
0: 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: डिस्कवर वेलनेस थ्रू द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। स्टे ट्यून्ड टू हेल्दी रहने के लिए म्यूजिकल परंपरा ऑन रेडियो नायरा।
2: ओह वाओ, गेटिंग प्रेज्ड बाय नागार्जुन फॉर रामायण इज समथिंग ह्यूज। हां, This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Nagarjuna praises Nitish Tiwari's Ramayan Part 1 trailers, calling it brilliant and revealing that he really liked Ranbir Kapoor and Yash. He also spoke about how trailers shaped audiences' expectation and play an important role in a film's box office journey. Box office journey to theek hai yaar, but it will also give us a very nice experience and something to be proud of, you know. Mujhe aisa lag raha hai. Well, stay tuned for more. I'll be back only on Naira.
3: Yo, yo, yo, yo!

आई थिंक यार, वो जिसे जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ना, उसे उतना देना चाहिए। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायर एंड योर डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ रिसेंटली क्लेम दैट अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट ही वॉज डेवलपिंग विद आयुष्मान खुराना वॉज सपोज टू फीचर मोहनलाल एज द को लीड। हाउएवर द लीक दैट द सुपरस्टार वॉज रेफर्ड टू एज सेकेंडरी कास्टिंग प्रॉम्प्टिंग हिम टू स्टेप अवे फ्रॉम द फिल्म, आयुष्मान हैज नाउ रिएक्टेड टू जूड सोशल मीडिया पोस्ट वेयर द फिल्म मेकर क्लेरिफाइड दैट द प्रोजेक्ट फेलिंग थ्रू वॉज नॉट द एक्टर्स फॉल्ट एंड एक्सप्रेस्ड होप ऑफ कोलैबोरेटिंग विद हिम इन द फ्यूचर। एक्चुअली आयुष्मान had breaked silence on Mohanlal being called secondary casting in the Jude Anthony Joseph's film. See, this is what I was telling. Matlab respect do yaar. By the way, stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

To WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: जाने।
1: हेलो हेलो हेलो पीपल, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, एंड अ वेरी वेरी वार्म हेलो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आ गई मैं प्राची। आप सुन रहे हैं सुनसरा रेडियो नारा पे 99.9 FM HD4 101.9 FM और 1490 AM पर। आज का टॉपिक भी आपके उतना ही दिल के करीब होगा। गैस तो कर लिया होगा पहले गाने से आपने, क्योंकि वापिस से हम आज बात करेंगे दोस्ती की, लेकिन सिर्फ वो वाली दोस्ती नहीं जिसमें साथ में चाय पीते हैं, जोक्स शेयर करते हैं।

हैं और बर्थडे विशेस शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाते हैं। आज बात होगी उस दोस्ती की जो कभी फैमिली से भी ज्यादा अपनी लगती है, उस दोस्ती की जिसमें हम बिना सोचे अपनी वल्नरेबिलिटी रख देते हैं, और उस दोस्ती की भी जहां एक दिन अचानक हमें रियलाइज होता है, वेट, मैं इस रिलेशनशिप में अकेला ही तो एफर्ट नहीं कर रहा। कभी सोचा है हम किसी को फ्रेंड बोलने में कितना टाइम लगाते हैं? कभी एक वीक, कभी एक मंथ, कभी कुछ साल। लेकिन किसी को मेरा दोस्त से मेरा अपना इंसान बनने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है, और फिर कभी कभी वही इंसान एक दिन स्ट्रेंजर जैसा लगने लगता है। आज हम इस पूरी जर्नी को समझेंगे, है ना? कैसे पता चले कि कोई सच में दोस्त है, कैसे पता चले कि फ्रेंडशिप हेल्दी है, रेड फ्लैग्स क्या है, ग्रीन फ्लैग्स क्या है, क्या हर फ्रेंडशिप इक्वल एफर्ट मांगती है, क्या हर हर डिस्टेंस का मतलब फ्रेंडशिप खत्म होना है। और सबसे पेनफुल सवाल, अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन वो आपको नहीं देता तो आप क्या करें? क्या चेज करें, क्या कंप्लेन करें, क्या चुप हो जाएं, या एक स्टेप पीछे लेकर देखे कि सामने वाला खुद कितना आगे आता है। आज की बात शायद किसी फ्रेंड की याद दिला दे आपको, शायद किसी पुराने व्हाट्सएप चैट की, शायद किसी नाम की जो आपने डिलीट कर दिया लेकिन नंबर अभी भी याद है। और शायद आज का शो आपको किसी को मैसेज करने पर भी मजबूर कर दे, या किसी को मैसेज ना करने का करेज दे दे। क्योंकि दोस्ती का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, हर कनेक्शन को लाइफ टाइम तक कैरी करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमारी लाइफ में स्टे करने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए, और कुछ हमें खुद से मिलवाने के लिए। लास्ट टाइम हमने सुना था ना, एरिस्टोटल ने जो निकोमाचियन एथिक्स में फ्रेंडशिप को ब्रॉडली तीन फॉर्म्स में डिस्कस किया था, यूटिलिटी, प्लेजर और वर्च्यू। सिंपल वर्ड्स में कुछ फ्रेंडशिप फायदे से चलती है, कुछ मस्ती से, और कुछ कैरेक्टर और म्यूचुअल गुडनेस से। पहली तो फ्रेंडशिप नेसेसरली फेक नहीं होती, लेकिन उनकी फाउंडेशन अलग होती है। आपका क्लासमेट्स नोट्स के लिए आपसे कनेक्टेड हैं, यूटिलिटी, राइट? आपका आपका पार्टी पार्टी बड़ी सिर्फ फन के लिए है, प्लेजर। लेकिन जो फ्रेंड आपकी सक्सेस देखकर जेन्युइनली खुश हो, आपकी गलती पर आपको रिस्पेक्टफुली रोक सके, और आपके डिफिकल्ट फेज में भी आपकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करे, वहां फ्रेंडशिप एक डीपर लेवल पर आ जाती है। और दोस्तों, आज हम इस डेप्थ को एक्सप्लोर करेंगे, है ना? आज अपने कॉन्टेक्स्ट ओपन कीजिएगा, देखिएगा बहुत सारे नाम होंगे, है ना? लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरी लाइफ में सब कुछ खराब हो जाए तो मैं किसको फोन करूंगा? और दूसरा, अगर मेरे फ्रेंड की लाइफ में सब कुछ खराब हो जाए तो क्या मैं उसका फोन उठाऊंगा? शायद फ्रेंडशिप्स की डेफिनेशन वही है ना? ये इंटरेस्टिंग सा दो सॉन्ग सुनिए, मैं मिलती हूँ वापस आपको।

Welcome back to Sun Zero Radio, Naira Pen 99.9 FM, HD4 101.9 FM, R 1499 AM. I am Prachi. And today we will not only celebrate friendship, we will understand friendship. Because sometimes relationship before saving relationship, we need to understand the relationship. We will talk about green flags, those small things which tell us, yes, ये इंसान सेफ है. कुछ सॉन्ग्स सिर्फ सॉन्ग्स नहीं होते, कभी कभी वो एक रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन बन जाते हैं ना. तो जैसे मैं कह रही थी अभी, आज बात करेंगे हम ग्रीन फ्लैग्स ऑफ फ्रेंडशिप. ग्रीन फ्लैग्स का मतलब ये नहीं कि फ्रेंड परफेक्ट है. परफेक्ट फ्रेंड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. रियल फ्रेंडशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी ईगो भी आ जाता है, कभी रिप्लाई लेट होता है, कभी फ्रेंड बिजी होता है. लेकिन डिफरेंस ये है, हेल्दी फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम के बाद रिपेयर होता है. सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग कंसिस्टेंसी, राइट? रोज बात करना कंसिस्टेंसी नहीं है. कभी कभी महीनों तक बात ना हो, और जब बात हो तो कनेक्शन वही हो, ये भी कंसिस्टेंसी है. हेल्दी फ्रेंडशिप फ्रिक्वेंसी से ज्यादा रिलायबिलिटी पर टिकती है. दूसरा ग्रीन फ्लैग, आप सक्सेसफुल हुए, फ्रेंड जेन्युइनली खुश, आपको प्रमोशन मिला, फ्रेंड प्राउड, आपकी शादी हुई, फ्रेंड एक्साइटेड, आपका बिजनेस चला, फ्रेंड सेलिब्रेट करता है, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि हेल्दी फ्रेंड आपकी सक्सेस को अपनी फेलियर नहीं समझता, है ना? सो आपको कंपीट नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट, थर्ड वन, अगर आपका फ्रेंड सिर्फ तब अच्छा है जब आप उसकी हर बात मान रहे हैं, दैट्स नॉट कंफर्ट, दैट्स कंट्रोल. रियल फ्रेंड कहता है ओके, तू नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, और फ्रेंडशिप नेक्स्ट डे भी जिंदा रहती है. सो आप नो बोल सकते हैं फ्रेंडशिप में, वैसा दैट्स अ ग्रीन फ्लैग, राइट? फोर्थ ग्रीन फ्लैग, दे रिमेंबर द स्मॉल थिंग्स. आपने कभी कैजुअली बोला था कि मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है, और चार महीने बाद भी वो फ्रेंड सॉन्ग भेजता है. आपने कहा था कल मेरा इंपॉर्टेंट डे है, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग मैसेज करता है ऑल द बेस्ट. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इमोशनल ब्रेन के लिए बीइंग रिमेम्बर्ड इक्वल्स टू बीइंग वैल्यूड, है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्लैग है, यू कह लो कि आप रो सकते हैं, जहां आप वीक फील कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम नॉट ओके, और सामने वाला आपकी वल्नरेबिलिटी को फ्यूचर आर्ग्यूमेंट में वेपन नहीं बनाता. यू कैन बी राइट विदाउट लाइक वल्नरेबल विदाउट बीइंग पनिश्ड फॉर इट. जहां आपको कॉन्स्टेंटली अपने वर्ड्स मेजर करने पड़ते हैं, वहां कंफर्ट कम है. जहां आप अपना इम्परफेक्ट सेल्फ भी दिखा सकते हैं, वहां फ्रेंडशिप है. फ्रेंडशिप का ग्रीनेस्ट फ्लैग ये नहीं है कि फ्रेंड कभी हर्ट नहीं करेगा, ना. ग्रीन फ्लैग ये है कि हर्ट करने के बाद वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, है ना? सोचिए इस बात पे, और साथ में ये गाने एंजॉय कीजिए. आती हूँ ब्रेक के बाद.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

Welcome back to Sun Zero Radio Naira Pay 99.9 FM, HD4 101.9 FM or 4090 AM. मैं हूँ प्राची. अब जरा ऑनेस्टली बता बात करते हैं. हर फ्रेंडशिप हेल्दी नहीं होती, राइट? और सबसे डिफिकल्ट पार्ट, कभी कभी अनहेल्दी फ्रेंडशिप में भी बहुत सारा प्यार होता है, इसलिए छोड़ना डिफिकल्ट होता है. रेड फ्लैग नंबर वन, ओनली कनेक्टिंग यू व्हेन दे नीड समथिंग, राइट? हे लॉन्ग टाइम, और आपको पता होता है अगला सेंटेंस होगा एक फेवर था ऐसे ही कुछ, या बस ऐसे ही शो अप हो जाता है, राइट? कभी कभी फेवर नॉर्मल है, लेकिन अगर फ्रेंडशिप का एंटायर पैटर्न ही फेवर बन गया तो क्वेश्चन फ्रेंडशिप का नहीं, ट्रांजैक्शन का है. रेड फ्लैग नंबर टू, योर पेन बिकम्स कंपिटिशन. आप बोलते हैं मेरा पूरा वीक बहुत डिफिकल्ट था, है ना? आंसर क्या आया? तुम्हारा डिफिकल्ट था, मेरा तो सुन. और फिर कन्वर्सेशन आपकी नहीं रहती, आप बोलना स्टार्ट करते हो, वो सामने अपनी बातें स्टार्ट कर देते हैं. हेल्दी फ्रेंडशिप में दोनों की पेन के लिए जगह होती है. रेड फ्लैग नंबर थ्री, आपकी प्रेजेंस को लाइटली लेना, आपको रिपीटेडली कैंसिल करना, सिर्फ तब याद करना जब दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ना हो. ये एक बार हो सकता है, दो बार भी, लेकिन अगर पैटर्न है देन डोंट इग्नोर द पैटर्न बिकॉज यू लव द पर्सन. दैट मीन्स दे कॉन्स्टेंटली मेक यू फील रिप्लेसेबल. नेक्स्ट रेड फ्लैग है, आप बोलते हैं, है ना, सपोज मैं थक गया, आई एम टायर्ड टुडे, लेट्स टॉक टुमारो. और सामने से जवाब क्या? फाइन, अब मैं कभी बात नहीं करूँगा. या साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट, इमोशनल प्रेशर, ये कम्युनिकेशन नहीं, ये मैनिपुलेशन हो सकता है. दैट मीन्स दे पनिश बाउंड्रीज, विच इज अ बिग रेड फ्लैग. रेड फ्लैग नंबर फाइव, दे कैनॉट सेलिब्रेट यू. आप कुछ अचीव करते हैं और वो इमीडिएटली कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं. लकी हो तुम तो इजी था, तुम्हें तो पूरा ये इजी मिल गया, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स होंगे. कभी कभी जेलेसी ह्यूमन है, लेकिन फ्रेंडशिप में जेलेसी को ऑनेस्टली और मैच्योरिटी से हैंडल करना होता है. आपका फ्रेंड इनसिक्योर फील कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन आपको डेलिब्रेटली स्मॉल फील कराना, दैट्स डिफरेंट, इंटेंशनली, राइट? कि आपको कोई छोटा दिखा रहा है तो वो गलत है. और एक रेड फ्लैग जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचो आप फ्रेंड से बात करके नॉर्मली क्या फील करते हो? लाइटर, हर्ड, ऐसा लगता है कि आपको सुना उसने, अंडरस्टूड, या फिर ऐसा फील करना करते हो गिल्टी, कंफ्यूज, या पूरा इमोशनली ड्रेन, एंग्शियस. फ्रेंडशिप में हर कन्वर्सेशन हैप्पी होना ज़रूरी नहीं है, कभी टफ कन्वर्सेशंस भी होती हैं. बट इफ योर नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली फील्स अनसेफ अराउंड समवन, listen to that feeling. You leave every conversation feeling worse about yourself. तुम छोड़ के भाग जाते हो जहां तुम्हें worst feel होता है, right? कभी कभी problem ये नहीं होती कि क्या वो मेरा friend है, problem ये होती है क्या मैं उसके साथ रहकर भी अपना friend रह पा रहा हूं. सोचिए इस बात को और साथ में गाना एंजॉय कीजिए.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

Welcome back to Sansara on Radio Nairon 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM. Prati. और अब हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टॉपिक टच करेंगे. दैट इज वन साइडेड फ्रेंडशिप, जहां आप मैसेज करते हैं, आप कॉल करते हैं, आप प्लान्स बनाते हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं, आप सॉरी बोलते हैं, आप चेक करते हैं तो ठीक है, और एक दिन आप रुक जाते हैं और देखते हैं अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या वो करेगा. इसी सवाल का आंसर हम ढूंढते हैं. सो कभी कभी दोस्तों, दोस्ती का हार्ट ब्रेक रोमांटिक हार्ट ब्रेक से कम नहीं होता, क्योंकि फ्रेंडशिप में हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि एक दिन हमें उसे लूज करना पड़ेगा. आज एक ऑनेस्ट सिचुएशन इमेजिन कीजिए. ठीक है, आप किसी फ्रेंड को मैसेज करते हो, हे हाउ आर यू, नो रिप्लाई. दो दिन बाद रिप्लाई आता है, देन लाइक एवरीथिंग ओके. ठीक है, नो रिप्लाई. फिर भी, फिर बर्थडे आप विश करते हो, फिर एक फेस्टिवल विश, फिर कोई रैंडम मीम, नो रिस्पॉन्स. आप सोचते हो बिजी होगा, बिजी होगा. फिर आप एक और स्टेप लेते हो, डिड आई डू समथिंग, और सामने से नथिंग यार, जस्ट बिजी. और आप समझ जाते हो मे बी बिजी इज नॉट द होल स्टोरी. कभी कभी फ्रेंडशिप खत्म एक ड्रामेटिक फाइट से नहीं होती, वो स्लोली फेड होती है. एक मिस कॉल, एक कैंसल प्लान, एक अनआंसर्ड मैसेज, एक लेटर, बाद में बात करता हूं, है ना, एक देखेंगे, और फिर साइलेंस. साइकोलॉजी में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. यानी सामने वाले के इमोशनल जो बीट्स को नोटिस करना और रिस्पॉन्ड करना. आप कहते हैं देखो ये फनी वीडियो है ना, फ्रेंड रिस्पॉन्स करता. आप कहते हैं आई हैड अ टेरिबल डे, फ्रेंड आस्क व्हाट हैपेंड. ये स्मॉल मोमेंट्स कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और जब रिपीटेडली ये बीट्स अनआंसर्ड रहने लगती है, कनेक्शन वीकन हो जाता है या वीकन हो सकता है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, नॉट एवरी डिलेड रिप्लाई इज रिजेक्शन फॉर श्योर. कभी लाइफ जेन्युइनली डिफिकल्ट होती है, जॉब, फैमिली, हेल्थ, मेंटल लोड, पेरेंटिंग स्ट्रेस. इसलिए एक इंसिडेंट को पैटर्न मत बनाओ, पैटर्न देखो और फिर रेसिप्रोसिटी देखो. आप कितना दे रहे हैं, वो कितना दे रहा है. परफेक्ट 50-50 नहीं, बट एटलीस्ट फ्रेंडशिप अकाउंटिंग बुक नहीं होती. कभी आप 80 दोगे, कभी वो 80 देगा. लेकिन अगर परमानेंटली 95-5 है तो एक पॉइंट पर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मे बी दिस रिलेशनशिप इज नॉट फंक्शनिंग द वे आई थॉट. और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा पर्सन है, और ये भी नहीं कि आप अनइम्पॉर्टेंट हो. कभी कभी दो गुड पीपल सिंपली डोंट नो हाउ टू मेंटेन द सेम रिलेशनशिप एनी मोर. डोंट मेजर योर वर्थ बाय समवन्स एफर्ट. किसी का लो एफर्ट आपकी लो वैल्यू का प्रूफ नहीं है. इट मे सिंपली बी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कैपेसिटी, प्रायोरिटी और डिजायर फॉर द रिलेशनशिप. सोचिए और ये गाना फील कीजिए.

Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi. Welcome back to Sunzera Radio, Naira Pe 99.9 FM, HD4 101.9 FM of 1490 AM. मैं हूँ प्राची. आगे बात करने से पहले अगर आपको अपना कुछ भी फीलिंग्स इस टॉपिक के रिलेटेड आपको शेयर करने का मन है तो यू कैन कॉल मी ऑन 919-999-8595. वंस अगेन 919-999-8595. अब बात करेंगे एक बहुत सेंसिटिव फीलिंग की. वो है मुझे रिप्लेस कर दिया, है ना. फ्रेंड किसी और के क्लोज हो गया, नया फ्रेंड ग्रुप, नई बेस्ट फ्रेंड, और आप साइड में. क्या करें, जेलस हो, फाइट करें या क्वाइटली वॉक अवे. दोस्ती में जेलसी ये वर्ड बोलते ही हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. मैं जेलस नहीं हूं, रियली. कभी कभी फ्रेंड किसी और के साथ बहुत क्लोज हो और आपके अंदर एक टाइनी सा थॉट आए, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं. दैट्स ह्यूमन. फीलिंग्स को जज करना जरूरी नहीं है, उनके साथ क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. इमेजिन आप और योर फ्रेंड योर से क्लोज हो, फिर उसकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आता है सडनली. हर प्लान में वो, हर फोटो में वो, हर कन्वर्सेशन में वो. आपको लगता है तो मेरा क्या. और सबसे पेनफुल थॉट, क्या मैं रिप्लेस हो गया. फ्रेंडशिप ओनरशिप नहीं है. आपका फ्रेंड किसी और को लव करे, किसी और के क्लोज हो, नई फ्रेंडशिप बनाए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो गई. Human beings have multiple attachment relationships, right? एक person आपको एक type का comfort देता है, दूसरा person another type. कोई adventure friend है, कोई emotional friend है, कोई childhood friend है, कोई intellectual friend है. कोई वो जिसको रात के 2 बजे phone करते हो. Friendship की beauty ये है कि हर connection identical होना ज़रूरी नहीं. लेकिन अगर आपको constantly sideline किया जा रहा है, प्रॉमिसेस ब्रेक हो रहे हैं, आप सिर्फ बैकअप ऑप्शन बन गए हैं, देन डोंट प्रिटेंड इट डजंट हर्ट. टॉक विदाउट एक्यूजेशन इंस्टेड ऑफ तुम्हें उसकी ही पड़ी रहती है. ट्राई दिस. आई नो यू हैव अनदर फ्रेंड्स एंड आई जेन्युइनली वांट दैट फॉर यू. But lately, I have been feeling a little disconnected from you and I miss our friendship. Difference dekha? Pehle sentence mein attack hai, dusre mein vulnerability. And this gives the other person a chance to respond. आप किसी को चूज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेंगे, है ना.

Welcome back to Sinjara, Radio Nairobi 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 4090 AM. मैं हूँ प्राची. अब थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है, क्योंकि कभी कभी फ्रेंड आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करते, बस आप दोनों एक दूसरे को समझना बंद कर देते हो और फिर आती है मिसअंडरस्टैंडिंग. और मिसअंडरस्टैंडिंग अगर टाइम पर सॉल्व ना हो तो छोटी सी बात इमोशनल डिस्टेंस बना जाती है, राइट? लेकिन क्या हर फ्रेंडशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भुला देना ही सॉल्यूशन है? नहीं, कभी कभी एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है. फ्रेंडशिप में एक डेंजरस हैबिट होती है, माइंड रीडिंग. उसने रिप्लाई नहीं किया मतलब उसको फर्क नहीं, उसने कॉल नहीं किया मतलब वो अवॉइड कर रहा है, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया मतलब वो मुझे नहीं चाहता, मे बी बट मे नॉट बी. हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोरी से फिल करता है और प्रॉब्लम तब होती है जब हम एजम्पशन को फैक्ट बना देते हैं. इसलिए हेल्दी कम्युनिकेशन को मतलब उसका बेसिक रूल है, ask before you conclude. Hey, I felt a little hurt when this happened. Can we talk? Not. You clearly don't care about me. One is conversation and the other is verdict. Or ek important thing, apology or accountability different hai. I am sorry you felt bad. Aur dusra, I understand what I did hurt you. I should have handled it differently. Dono same nahi. Healthy friendship mein accountability hoti hai, lekin dosto aapko bhi ek cheez yaad rakhni hai. You don't have to win every argument. Sometimes the goal is not kaun right hai. The goal is hum dono kaise theek ho sakte hain. Aur agar friend kehta hai I see your point, that's a big thing. और अगर आप भी कह सकें I understand your side, that's a maturity. Friendship में repair often matters more than perfection. Strong friendships don't avoid conflict. They learn how to come back from the conflict. है ना? चलिए ये गाना enjoy कीजिए.

0: Welcome back to Sincero Radio, 99.9 FM, HD4 101.9 FM, or 4090 AM. मैं हूँ प्राची. और अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जिसके बारे में लोग कम बातें करते हैं, वो है फ्रेंडशिप ब्रेकअप. हाँ, ब्रेकअप, बिकॉज फ्रेंडशिप भी ब्रेकअप हो सकती है और कभी कभी उसका ग्रीफ बहुत रियल होता है. रोमांटिक ब्रेकअप के बाद लोग समझते हैं कि आप हर्ट हो, लेकिन फ्रेंडशिप ब्रेकअप लोग बोलते हैं, अरे यार फ्रेंड ही तो था. अरे फ्रेंड ही तो था, एग्जैक्टली फ्रेंड ही तो था जिसके साथ आपने सालों की लाइफ शेयर की. इनसाइड जोक्स, सीक्रेट्स, फाइट्स, फैमिली स्टोरीज, ड्रीम्स, फेलियर्स, सेलिब्रेशंस, और सडनली नथिंग. फ्रेंडशिप ब्रेकअप को कभी कभी एम्बिग्यूस लॉस के लेंस से समझा जा सकता है. लॉस जहां रिलेशनशिप का स्टेटस क्लियर नहीं होता, पर्सनल लाइफ है, सोशल मीडिया पर एक्टिव, और ये स्ट्रेंज ग्रिफ है, आप उनको मिस करते हो लेकिन कॉल नहीं कर सकते, उनकी बर्थडे याद है लेकिन विश करना ऑकवर्ड लगता है, कोई ओल्ड सॉन्ग सुनते हो और पूरी फ्रेंडशिप याद आ जाती है. और सबसे पेनफुल पार्ट, आपको कभी प्रॉपर गुड बाय भी नहीं मिला. समटाइम्स फ्रेंडशिप एंड्स विद अ फाइट, समटाइम्स बिट्रेयल, समटाइम्स डिस्टेंस, समटाइम्स मैरिज, समटाइम्स प्रायोरिटीज, समटाइम्स लाइफ, और कभी किसी ने कुछ रॉन्ग किया ही नहीं, बस दोनों लोग बदल गए. प्लीज रिमेंबर दिस, नॉट एवरी फ्रेंडशिप एंडिंग रिक्वायर्स अ विलन. समटाइम्स पीपल ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट फेक था. आपने जो मोमेंट्स शेयर किए दे वर रियल. इवन इफ द रिलेशनशिप डिडंट लास्ट फॉर एवर, एक फ्रेंडशिप का एंड उस फ्रेंडशिप की वैल्यू को कैंसिल नहीं करता. जैसे स्कूल का लास्ट डे स्कूल को मीनिंगलेस नहीं बनाता, राइट? सम पीपल आर चैप्टर्स, और चैप्टर को ब्यूटीफुल होने के लिए पूरी बुक में रहना जरूरी नहीं. कभी कभी फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, खुद को ब्लेम. मे बी आई वॉज टू मच, मे बी आई कॉल टू मच, मे बी आई केयर टू मच, मे बी मैं रेडी था. ये गाना एंजॉय कीजिए और मैं आती हूँ ब्रेक के बाद.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-8888.

0: வெல்கம் பேக் டு ரேடியோ நேரா 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM ஆப்சன் ரேசன் சராபர் பிராச்சி. வெல், கபி கிசி நே ஆப்கோ ஃபீல் கராயா ஹை கி ஆப் டூ மச் ஹோ, டூ இமோஷனல், டூ கேரிங், டூ அவைலபிள், டூ எக்ஸ்பிரசிவ், டூ அட்டாச், டூ சென்சிட்டிவ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் பாஸ். Being emotional is not automatically a weakness. Caring isn't automatically desperation. Expressing affection is not automatically neediness. Problem tab hoti hai jab care ke badle control aa jaye, love ke badle dependency aa jaye, concern ke badle constant monitoring aa jaye. Healthy attachment aur unhealthy dependence ki ek cheez nahi. आप फ्रेंड को मिस कर सकते हैं, लेकिन उनको हर मिनट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि वो आपको मिस करते हैं. आप फ्रेंड से क्लोजनेस चाह सकते हैं, लेकिन उनकी इंटायर सोशल लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते. आप रीअश्योरेंस मांग सकते हैं, लेकिन रीअश्योरेंस कभी इनफ ही ना हो तो फिर प्रॉब्लम रिलेशनशिप से ज़्यादा इंटरनल इनसिक्योरिटी का भी हो सकता है. और यहाँ बाउंड्रीज आती है. बाउंड्री का मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते. बाउंड्री एक्चुअली होती है, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा. ये फॉर एग्जाम्पल, अगर बार बार प्लान्स कैंसिल होंगे, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करूँगा. अगर कन्वर्सेशन डिसरेस्पेक्टफुल होगी, मैं कन्वर्सेशन एंड कर दूंगा. अगर रिलेशनशिप वन साइडेड रहेगा, मैं एफर्ट रिड्यूस करूँगा. दैट्स बाउंड्री, पनिशमेंट नहीं. और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट टेस्ट पीपल. मैं मैसेज नहीं करूंगी, देखते हैं वो कब करता है. समटाइम्स यू नीड स्पेस, बट टर्निंग एवरी फ्रेंडशिप इनटू एन एक्सपेरिमेंट विल एग्जॉस्ट यू. इंस्टेड कम्युनिकेट एंड देन ऑब्जर्व. वर्ड्स मैटर, राइट? पैटर्न मैटर मोर. आपको किसी को चेज करके अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव नहीं करनी. द राइट पीपल वोंट रिक्वायर यू टू ऑडिशन फॉर यू प्लेस इन देयर लाइफ. और हमें हमारे साथ एक कॉलर आए हैं. रुकिए, वेट, होल्ड ऑन. हेलो,
1: हेलो,
0: हाय
1: हाय प्राची, दिस इज विकी.
0: हाय विकी, हाय, नाइस टू मीट यू. वाओ,
1: सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में कहाँ से है वो रेडियो सुन रहा है आपका चैनल. हमारी एक दोस्त है रमीसा, उन्होंने लगाया ही रेडियो के धंधे पे.
0: ओह वाओ, नाइस.
1: आपका चैनल सुना, इट्स वेरी गुड. और आप बहुत अच्छा बोलती हैं.
0: शुक्रिया.
1: आपके पे बहुत अच्छे सॉन्ग भी प्ले किए जाते हैं. आई लव्ड इट.
0: थैंक यू.
1: और ये स्पेशली रमीशा ने, मुझे रमीशा ने पोस्ट किया तो मैंने कहा कॉल लगा ही लो. आई ट्राई कॉल यू.
0: ओके, बताइए कुछ कहना चाहते हैं फ्रेंडशिप पे.
1: फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जब तक सही है जब तक बेलॉस है. बेलॉस मतलब कोई मतलब ना हो. और ये वाहिद रिश्ता है जिसमें आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई आप कहने के शर्त नहीं होती. इवन मैरिज में भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, लेकिन दोस्ती में आप अपने मन से चुनते हैं और कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं होती. एक सेफ जोन होता है जहाँ तक मुझे समझ में आ.
0: बिल्कुल.
1: तो फ्रेंडशिप एक अनमोल रिश्ता. ऑफ कोर्स
0: बहुत ज्यादा प्रेशियस अगर सही लोगों से हुआ है तो.
1: सही. एक्चुअली हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्या हम जिसे फ्रेंड समझ रहे हैं वो वाकई फ्रेंड है? हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता.
0: करेक्ट.
1: सिर्फ हंसी मजाक और पार्टी चिल करने वाला ही दोस्त नहीं होता.
0: बिल्कुल.
1: दोस्ती एक बहुत बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत अजीम जज्बा है जिसको हम देखते कनेक्टिविटी के साथ. जब इनर फीलिंग आपकी पूरी तरीके से कनेक्ट होती है, वो है एक्चुअली दोस्ती. वरना तुम बहुत से लोगों से मिलते हैं, रोज हंसते हैं, बातें करते हैं, दैट्स नॉट फ्रेंडशिप. बहुत सारे होते हैं जिनको हम फ्रेंड्स कहते हैं मुंह से, बट होते एक दो ही हैं.
0: बहुत बहुत बहुत सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही।
1: तो आप एक सॉन्ग मेरी तरह से मेरे दोस्तों को डेडिकेट कीजिए।
0: जी कौन सा?
1: ये दोस्ती।
0: ओके,
1: शोले मूवी से।
0: पक्का, डन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थॉट, राइट? या सो सोच समझ के दोस्ती बनाइए। और अब ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आ रहा है ब्रेक के बाद।
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
3: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, to the signature soul dal bukhara.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
0: For you, Vicky ji, and your friends.

Welcome back to Sunset Radio 99.9 FM, HD4 101.9 FM और 49 AM. कुछ फ्रेंडशिप में एक और ब्यूटीफुल प्रॉब्लम होती है, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन नहीं है. एक फ्रेंड मिस करता है लेकिन मैसेज नहीं करता, वो केयर करता है लेकिन बोलता नहीं है, वो चाहता है सामने वाला मिल लाइफ में रहे लेकिन डायरेक्टली नहीं कह पाता, और फिर सामने वाला सोचता है मे बी ही डजंट केयर. अनसेड फीलिंग्स आर ब्यूटिफुल इन पोएट्री, बट रिलेशनशिप्स में कभी कभी वर्ड्स भी ज़रूरी होते हैं. आपके फ्रेंड को माइंड रीडर नहीं होना चाहिए. अगर आप मिस करते हो तो से इट, मिस्ड यू. अगर फ्रेंड इंपॉर्टेंट है से इट, यू मैटर टू मी. अगर फाइट के बाद भी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है से इट, आई डोंट वॉन्ट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग टू बिकम बिगर देन आवर फ्रेंडशिप. इतना कहने में क्या जाता है? मे बी ईगो, मे बी फियर, मे बी वल्नरेबिलिटी, बट समटाइम्स वन सेंटेंस, वन ऑनेस्ट सेंटेंस कैन सेव मंथ्स ऑफ साइलेंस. और फ्रेंडशिप को भी रिचार्ज करना पड़ता है. फोन को देखिए, बैटरी लो, नोटिफिकेशन आता है, चार्ज योर डिवाइस, राइट? फ्रेंडशिप में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बस एक दिन डिस्टेंस आ जाता है. इसलिए कभी कभी कॉन्सिक्यूसली रिचार्ज कीजिए, कॉल, वॉइस नोट, मीट. तो कैसा है, मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? ऐसे जेस्चर्स फ्रेंडशिप को अलाइव रखते हैं. और दोस्तों, कभी कभी सामने वाला एक्सप्रेस नहीं करता बिकॉज ही डजंट नो हाउ. सम पीपल फील डीपली बट कम्युनिकेट पुअरली. उन्हें विलन बनाने से पहले उन्हें स्पेस दीजिए टू लर्न, बट एट सेम टाइम डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर एवर फॉर समवन हु रिफ्यूजेस टू कम्युनिकेट. If someone matters to you, don't make them decode your silence. Give them sentence, give them gesture, give them certainty. Ye song suniye and I'll be back. Aaj ka

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 49 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
1: So, दोस्तों, आज आपने बहुत सारी बातें जानी, बातें की फ्रेंडशिप के बारे में. मुझे और कुछ और भी बहुत कुछ कहना था, बट आज का सफर यहीं तक था. सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ बार बार दूर जाकर वापस आते हैं, कुछ सिर्फ मेमोरीज बन जाते हैं और कुछ घर जैसे लगते हैं. उन लोगों को संभाल कर रखिए, उन्हें अज्यूम मत कीजिए, उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, उन्हें थैंक यू कहिए, उनसे बातें कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनके लिए वैसे ही दोस्त बनिए जैसे दोस्त आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, है ना. सो याद रखिए, आप बोलो जरा, मैं हमेशा सुन रही हूँ. Take care of yourself, take care of your people, and please don't forget to tell the people you love that you love having them in your life. Goodbye for today. But dosti, uski kahani kabhi khatam nahi hoti. Theek hai? Aur ye ek extraordinary song for all those friends jo aapko deserve nahi karte.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Across 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
2: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
3: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event.
4: Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
5: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा. एक बार आए तो रोज आए.
6: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ
1: ರೇಡಿಯೋ ನಾರ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM ಪಕ್ಕ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್.

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनिरबना नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। सात से दस में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। घड़ी में शाम के ठीक सात बज चुके हैं और आपके इस ट्यूजडे ड्राइव टाइम सफर को और भी खुशनुमा और रिलैक्सिंग बनाने मैं आ गया हूं हमेशा की तरह। मंगलवार की पूरी व्यस्तता और दिन भर की भाग दौड़ अब थमने को है। काम पूरा हो चुका है तो अपनी गाड़ियों की रफ्तार को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, सीट बेल्ट बांधिए, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाइए और अपनी शाम को बेहद सुकून भरा बनाइए। रैली दाराम, चैपल हिल और हमारे पूरे रिसर्च ट्रायंगल पार्क के सभी मेरे प्यारे लिसनर्स को बहुत बहुत वेलकम मेरी तरफ से। एंड आई एम सो सॉरी, आज ना मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है एंड यू नो लाइक बात करते करते थोड़ा लो भी फील हो रहा है, बट मेरे सारे प्यारे लिसनर्स के लिए तो मैं यहाँ पे हमेशा रहूँगा क्योंकि आपके शाम को रिलैक्सिंग जो करना है। सुनाने जा रहा हूँ आपको ये अगला।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

इंजॉय किया आपने ये गाना। गाना था वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल, जिसने ट्यूसडे की इस शाम को बनाया है काफ़ी खूबसूरत। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड खबर, पहली खबर जो है वो पर्यावरण और नदियों से जुड़ी है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने ट्रायंगल एरिया की नदियों में पाए जाने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी को लेकर आज एक गंभीर चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जहरीला एल्गी केवल पानी को दूषित नहीं कर रहा, बल्कि हवा के जरिए हमारे फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है। इसलिए जब तक प्रशासन इसे साफ नहीं कर देता, लोग नदी किनारे जाने से बचे। ये वार्निंग भी दी है कि नदी किनारे आपको जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूषित कर रहा है पानी को, एंड गंभीर जो चीज़ है वो भी हो सकती है। इसलिए इफ इट पॉसिबल, अगर नदी के किनारे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जब तक अगला कोई अपडेट नहीं आता है तब तक तो जाना नहीं है। जैसे ही अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो, हमेशा की तरह। सुनते हैं अगला।

नाइट्स एंड धर्म शहर ने आधिकारिक तौर पर स्टेफनी मार्डिस को अपना नया पुलिस चीफ नियुक्त किया है। धर्म के मेयर लियो विलियम्स ने कहा कि उनकी नियुक्ति शहर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समय पर हुई है, क्योंकि प्रशासन का पूरा ध्यान वर्तमान में हिंसक घटनाओं को कम करने के रणनीतियों पर है। मार्डिस ने अपनी नियुक्ति पर सम्मान व्यक्त करते हुए कहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहेगी हमेशा एंड ये बहुत अच्छी बात है हमारे सभी के लिए, धर्म के लिए। एंड मतलब ये है कि धर्म प्रशासन ने अपनी समिट ऑन द सेविंग लाइव्स के तहत हर साल गोलीबारी और हत्या की घटनाओं में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही ये एक्टिविटी जो है वो चालू की है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वदा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मीठा था हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था कि ट्यूसडे की शाम जो है वो आपकी कैसे चल रही है। पर्यावरण का हमें खासकर ख्याल तो रखना ही है एंड मौसम विभाग के मुताबिक आज रात आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और ड्राइव करने के लिए जो कंडीशन है ये भी अच्छी रहने वाली है। इन बड़ी स्थानीय खबरों के बाद हम और कुछ लोकल न्यूज़ जान लेते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा था कि FAA के शीर्ष अधिकारी, दैट इज़ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष अधिकारी, सोमवार को रैली डरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दौरे पर पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार अगले 20 वर्षों तक RDU एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों का ट्रैफिक 20% तक बढ़ने का अनुमान है। इस बढ़ते दबाव को संभालने के लिए एयरपोर्ट पर एक नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म RDU एंड इसके तहत नई 2 मील लंबी रनवे, दैट इज़ यस 2 मील नई लंबी रनवे का निर्माण किया जा रहा है जो 2029 तक पूरा होगा, जिससे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विमानों और यूरोप के लिए सीधी उड़ानें भरने में मदद मिलेगी जो कि काफी अच्छी।
1: मैं दगड़ू हुईगुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
2: Uvaipu, Fugaripu, you like me and I like you too. Uvaipu, Fugaripu, you like me and I like you too. Uvaipu, Fugaripu, you like me and I like you too.

0: गए फुलझड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे वारा बन मेरे जाई सबन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Fugadi Poo, you like me and I like you too. Oh bhai Poo, Fugadi Poo, you like me.

का ये गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9। चिलचिलाती गर्मी के बीच रैली शहर ने अपनी पानी के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा लिया है, लेकिन धरम में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। धरम में अभी भी स्टेज टू जल प्रतिबंध, दैट इज स्टेज टू वाटर रेस्ट्रिक्शन जो है वो लागू है। धरम का मुख्य जलाशय लेक मीची अपनी सामान्य क्षमता से केवल 55% पर है, जिसका मतलब है कि शहर के पास अब केवल 144 दिनों का पानी बचा है। इस प्रतिबंध के तहत निवासियों को घरों के बाहर पानी का छिड़काव करने, कार धोने और पावर वॉशिंग करने के लिए मना किया गया है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि नेचर का अगर आप ख्याल रखोगे तो नेचर डेफिनेटली आपका ख्याल रखेगा। नेचर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी से हम अगर रखना शुरू करते हैं तो अगले ईयर में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो करना चाहिए। एंड डोंट वरी, नेचर की केयर कर लो, नेचर आपको भर भर के देगा।